सो खसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसल फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

फसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे केसो फसम फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे भजन ना पायो।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनई में बारे हमारे सब साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभकल में। शुभकल कार्यक्रम में हम हेंगे आपके संगे आपके रेडियो दोस्त वर्षा। श्रोताओं, कार्यक्रम में जो बातचीत होते ही बातों आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपने पर्यावरण से जुड़ी भी चर्चा इस कार्यक्रम के अंतर्गत करत रहेंगे। संगे में कहूं कहूं अपन आजीविका से जुड़ी भी बातचीत भी अपन करत रहेंगे। तो आप सबको बता दीजिए कि आज अपने लाने बहुत ही खुशी वालों दिन है वो।

खुशी वालों दिन इसे है को कि अपने जो श्रोता हैंगे बीकेस भैया ने खुद से शुभकल कार्यक्रम बना के अपने पास भेजो है को और उनने कही है कि आप बस इन्हें गाना लगा के और इसी तरह एडिटिंग करके यानी कि कछु गलती हो गई वही सुबह काट के और ये प्रोग्राम को शुभकल कार्यक्रम में चला दो तो हमें बहुत ही खुशी हुई जे। और संगे में बीकेश जी को जो भी कहो है वो के हमारे जो भी श्रोता हैंगे जो रेडियो से ज्यादा लगाव रखत हैंगे और हर वक्त रेडियो बुंदेलखंड को सुनत हैंगे भी सब जने एक एक कोनो विषय ले लेवे यानी के जो भी प्रोग्राम रेडियो के माध्यम से चल रहे हैंगे जैसे शुभकल है हम होंगे कामयाब है महिलाएं के कोनो कार्यक्रम है या बारी हमारे गांव की है हमारा गांव हमारी सरकार है खेत खलियान कार्यक्रम है तो जोन भी विषय आपको अच्छो लगत हुए वो विषय को लेके एक प्रोग्राम बनावे तो उन्हें बहुत ही अच्छो लगे संगे में साथियों हमें भी बहुत अच्छो लगे काहे के देखो आप जानत होगे रेडियो बुंदेलखंड सामुदायिक रेडियो है वो और जब समुदाय की भागीदारी में बढ़ जाएगी तो बहुत ही नोनो हो जाए वो तो समुदाय की भागीदारी बढ़ावे के लाने अपन सबको जो प्रयास करने आए शुरुआत बीकेश जी ने कर दी हैगी और हमें लगत है वो कि ये कार्यक्रम को सुनने के बाद हमारे और भी जो श्रोता साथी हैंगे उनको भी जरूर मन में लगे कि अरे भैया हमें भी बनाने हैं प्रोग्राम तो देखो रिकॉर्डिंग की जहां तक बात हैगी तो रिकॉर्डिंग आप अपने फोन में करके और हमें व्हाट्सएप कर दो बस फिर तो आगे की जो प्रक्रिया हो जब हम पूरी कर दें आप ये बात की चिंता ना करो बिल्कुल भी कि भैया हम गाना कैसे लगाएं हम उनको सही बोलें कि नहीं बोलें कछु गलत तो ना बोल दें बा जिम्मेदारी हमारी हैगी हम सुन के एडिटिंग करके उनकी फिर अच्छो प्रोग्राम बना के जवई रेडियो पे उनको जान दें ठीक है। और भैया आज के कार्यक्रम में अपने बीकेश भैया बड़े खुश हैंगे और शुद्ध बुंदेलखंडी में बोल के अपन और इनके बीच में बता रहे हैं कि जो मौसम देखो कितने भयंकर घाम पड़ रहा है वो तो इनके लाने अपनी लू से बचवे के लाने काका उपाय अपन और कर सकते हैं कि कैसे बचाव करवे सावधानी काका रखवे बीकेश भैया अपन को बता रहे हैं तो सुनत हैंगे कार्यक्रम शुक्ल में जो कि बीकेश जी द्वारा बनाओ गए है वो

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी श्रोता भाइयों को आपके दोस्त वीकेश की प्यार भरी नमस्कार। श्रोता भज्जाओ, कार्यक्रम शुभ कल लेके मैं हाजिर हूँ आप सबन के बीच में आज। और जा तपती गर्मी, एकदम जो लू बढ़ रही है, ये देखो अपने पर्यावरण को भी एक विशेष वो कहो जात का जो कार्यक्रम ये की लाने हैं शुभ कल। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत आज ही विशेष करें हम और आज के कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए अपन, ये पहले एक गीत सुने थे, ये गीत के बाद अपन जो है बातचीत करें।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार धरती।

0: सिन्हा धरती माँ की यही पुकार।
1: तो श्रोता भैया हो पाए अपन ने जो गीत सुना, ये गीत खो सुनने के बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो जो लू चल रही है, गर्मी को जो महीना और घाम जो कितना तेज पड़ रहा हो, पानी की जगह जगह किल्लत हो रही, तो सबसे बड़ी बात तो है कि मौसम में पानी जितना अपन सब बचा पाए उतनी बचाए। काहे के अब पानी की ये है कि देखो कितने गर्मी में तो ज्यादा जरूरत पड़े पानी की और गर्मी में वो कम पाए जा, तो अपन बचाए। और राह चलते आदमी कौन से आ रहे तो उन्हें पानी वानी पिया उनकी मदद करें, वो सबसे बड़ा पुण्य है भज्ज। तो कार्यक्रम शुभ कल में तो लू को लेकर जब बातचीत आप सब जो है सुनाना ही। अब देखो ऐसा है कि भैया हर हम तो जो ही चाहू के देखो ये लू के माहौल में गर्मी में को बारे कड़वी से पहले अपने कोशिश करके देखो कि ज्यादा जरूरी हो तब ही करो, और शाम सुबह जो काम बाहर की है वो निपटा लो अपने। अगर आप सबन को लगा थे कि नहीं जाने ही जाने हैं तो जा रहे हैं, अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो हेल्थ बेल्ट लगा लो अच्छा बढ़िया है, कैजी से अपन खबर गर्मी की जब लू है बार ना लग पाए लपट, तो अपन जो कर सके तो बचाओ मतलब जरूरी है। और पानी की बोतल अपनी जरूर संग ले रहो, काहे के भैया हो देखो कम पानी मिला नहीं मिला अपन कहते दूर तक जा रहा है कैसे का अपन को पानी क्या मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, तो अपनो संग इंतजाम बहुत जरूरी है बच्चे ऐसे। तो जिस अब बातें हैं बाकी अब जो है कि देखो कोशिश बच्चे और बूढ़न की लू से बचा भी की है, तो कहे कि उन्हें तो कोशिश करो कि शाम सुबह ना मार रहे और दोपहर में तो अपने घर के अंदर लगे बच्चा वही में ठीक ठाक है। कहे कि अब देखो बच्चा है भी नहीं मानस खेले बगैर शाम सुबह ने खेल ली मैं तो पच जाऊंगे अपने घर के भीतर कर लो, ये ऐसी बूढ़े आदमी की कहे कि भज्जा इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। कहे कि अपन खुद देखो काम करने ही करने हैं तो थोड़े बहुत बाहर करने पड़ा, लेकिन इन्हें की एक कोशिश करो कि इन्हें ना कड़न दो तिकलू में जो ये है ये गर्मी के दो महीना का।

Para, Enem!

0: वृक्षों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: गीत के बाद श्रोता भैया हरो आपको फिर से स्वागत करते हैं आपको दोस्त बी के इस कार्यक्रम शुभ कल में। तो श्रोता भैया हरो जो न्यूज से जुड़ी हुई चर्चा अपनी चल रही थी और हम आपको जैसे बताएं जैसे हम यहाँ को पन्नो है जी सब चीजें हैं अगर काल मुल्लू लग जाए सख्सा है तो जी लगा जैसे देसी नुस्खा है अपने जैसे डॉक्टर भैया तक जो लोग नहीं जा पा रहे तो अपने घरे ही इंतजाम कर लो। लेकिन डॉक्टर को तो अपन को जैसे दिखाने ही दिखाने हैं बला परवाही नहीं करने का है कि अब देखो अपन सब जाना था कि डॉक्टर जब तक वो देखना ले बस तकलीफ हो तो वो हिसाब से दवाई दे तो जी सब बातें हैं। सो जरा गर्मी के मौसम में लपट से अपन को बड़ो ख्याल करनी अपने अपने बाल गोपालन को सबको भैया। और देखो जो होती में कि जैसे अपन को सावधानी रखे रहो तो अपन को सामना नहीं करने पड़े ऐसी दिक्कत को तो जी सब बातें हैं। बाकी श्रोता भैया हरो जो हमारा कार्यक्रम किया सोला वहीं पे आने आप हमें जो है सुझाव दियो अपने के जो है और हम सब लोगों से ये बोल के वो चाहे सभी श्रोता भैया से जैसे कार्यक्रम आप लोग भी बना के भेजो ताकि अच्छा लगा था अपने रेडियो है अपनी बातें हैं ये अपने तपन आने बढ़ाए ये तो अपन सब जने सही दे रहा हो था ना अच्छा लगा थे। और बाकी अभी कार्यक्रम से आपके दोस्त भी की इसको दो जावे की इजाजत और जावे के पहले लिख लो मोबाइल नंबर और पता जिसे चिट्ठी या फिर फोन करके आप हमें बता पाओ। तो हमारा मोबाइल नंबर है रेडियो को 94-25-14-17-26 और पता है ओरछा तगेला के पास ताराग्राम ओरछा तो जो हम पतो है सो जे चिट्ठी भेज सकत वो जो नंबर अपन ने बताओ सो यही व्हाट्सएप कर दो मैसेज भेज दो तो ये सब बातें हैं सो अपनी राय सुझाव दो भज्जा। और अपने जो कार्यक्रम है ऐसे ही आगे चलाते रहे सबको सही और बना रहे सो ई कार्यक्रम शुभ कल से अपने दोस्त विकी खुद अजावी की इजाजत नमस्कार।

0: अपना रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे हमारे सभी श्रोता साथी सुन रहे थे कार्यक्रम शुभकल। शुभकल कार्यक्रम श्रोताओं बीकेश जी द्वारा बनाओ गए है गो और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम बीकेश भैया ने बनाओ है गो। हालांकि अब कोनो ऐसी बात नहीं आऊ में के एक्सपर्ट जुड़े हों या फिर कछु और बतकाव होत हो, लेकिन जो ई मौसम में जरूरी बातें हैं बेसब्री बातें उनने कार्यक्रम में करी है। तो बीकेश भैया हम आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद कर रहे थे और पूरी रेडियो बुंदेलखंड की टीम आपको धन्यवाद कर रहे थे कि आपने एक नई पहल शुरू करी हैगी और वो अंग्रेजी में कन्वी लगा थेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आपने जो पहलो कार्यक्रम बनाओ है वो एकदम से उम्दा लगो, बहुत ही नोनो कार्यक्रम लगो है वो अपन सबको। और हम चाहू थेंगे, हमारी पूरी टीम चाहू थेगी कि ऐसे ही हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं वे भी एक एक विषय को लेकर भैया हारो और काके तई एक एक प्रोग्राम जरूर बनावे, काहे कि हम उनको भी तनक बोझ कम हो जाए है गो। रोज के रोज 11 घंटा प्रोग्राम चलाऊ थेंगे, आप भी 11 घंटा में 3 जने कैसे कवर कर पेहेंगे। तो आप सबको सहयोग अगर बनो रहेगो तो हमारे जरूर सफल हो जाएंगे। और रेडियो बुंदेलखंड तो आपको अपना ही रेडियो है गो, है कि नहीं या? सो आप सब जने जरूर सोच विचार करियो ये बात पे। और बीकेश भैया तो देखो अब अपने तैयार हो गए हैंगे एक नए रिपोर्टर बनके। तो बीकेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बहुत उम्दा सो कार्यक्रम और आज की मौसम को देखत भय आपने जो कार्यक्रम बनाओ है गो, आगे भी आप ऐसे ही कार्यक्रम और भी बना के हमारे बीच में जरूर भेजत रहे, हमें बहुत अच्छा लगे है गो। तो साथियों आप कार्यक्रम शुभकल को समय तई समाप्त हो बेचारा है गो। तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, अगर आप पत्र लिखवो चाहतेंगे तो हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब हम चला देंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
1: शुभकल बदलती जलवायु के लिए।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को अजीत का अभिवादन
2: और विमलेश का नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लगातार कार्यक्रम को सुनने के लिए। और आज हम कार्यक्रम का प्रारूप थोड़ा सा बदलेंगे
2: जी।
0: अक्सर हम शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, लेकिन आज आरंभ करना चाहते हैं एक लघु कथा से
2: जी।
0: जो कि आप कहते हैं कि हमें लघु कथा बहुत पसंद आती है, तो आइए सुनते हैं आज की लघु कथा।
2: एक बार एक नौजवान शिष्य महान दार्शनिक सुकरात के पास आया और उनसे पूछा,
0: गुरुवर, सफलता का रहस्य क्या है?
2: सुकरात ने उससे कहा,
0: मैं तुम्हें कल उत्तर दूंगा, कल तुम मुझे नदी के किनारे मिलो
2: जी। दूसरे दिन वो युवक सुकरात से नदी के किनारे मिला।
0: सुकरात उसे लेकर नदी में आगे बढ़ने लगे।
2: वे दोनों नदी में तब तक आगे बढ़ते रहे
0: जब तक नदी का पानी उनके गले तक ना आ गया।
2: और नदी के बीच में पहुंचकर अचानक ही सुकरात ने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया।
0: पानी के भीतर सांस लेने में अक्षम होने के कारण, श्रोताओ, वह युवक पानी से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह से संघर्ष करता रहा,
2: लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ के सामने उसका ये संघर्ष विफल रहा।
0: मरता क्या न करता, श्रोताओ, उस युवक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि किसी प्रकार पानी से बाहर आ जाए।
2: पानी से बाहर निकलते ही वो युवक हांफते हुए तेजी से सांस लेने लगा।
0: उसे ऐसा करते देखकर सुकरात ने पूछा,
2: ये बताओ, जब तुम पानी के भीतर थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहते थे?
0: उस लड़के ने कहा, मैं चाहता था सांस लेना।
2: सुकरात ने कहा,
0: यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना सांस लेना, तो वो तुम्हें मिल जाएगी।
2: इसके अतिरिक्त सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।
0: तो श्रोताओं, आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है
2: जी।
0: तो याद रखिए कि सफलता प्राप्त करने का रहस्य है
2: उसकी पूरी शिद्दत से

0: कार्यक्रम की ओर। और जैसा कि हमने कल भी किया था, आपको कार्यक्रम सुनने से पहले हल करनी होगी
1: एक पहेली,
0: और वह भी 30 सेकंड से एक मिनट के अंदर, क्योंकि आज का कार्यक्रम भी इसी पहेली पर आधारित है।
1: पहेली है,
0: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
1: आपके लिए क्लू है,
0: बिहार,
1: शाहबाद।
0: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान अपनी बांह स्वयं अपने हाथों से काटकर किस नदी में फेंक दी थी?
1: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए ये लघु गीत।
0: जी हाँ, ये लघु गीत सुनिए। और जब ये लघु गीत बज रहा है तो जल्दी से हमें फोन मिलाकर आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए।
1: उत्तर देने के लिए हमारा IVRS नंबर है
0: 8800404559।

0: तो आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: जी हाँ श्रोताओ, आपको कार्यक्रम का नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि कार्यक्रम सुनते सुनते आपको आज के प्रश्न का उत्तर देना है।
2: किसानन का महाजनन से बदला लेकर इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिली। हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: अठारह भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
4: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड।
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।

0: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 77 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
1: सुना तुमने?
2: क्या?
1: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
2: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली के मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
2: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे। कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
3: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे। अरे का हो, अब हमारा कुंवर सिंह का करें?
4: अगर सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
5: चाहिए कि जिसके बारे में
1: जान। हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
2: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
6: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी, हुजूर,
6: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
1: जी हुजूर।
6: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
0: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
6: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों,

0: समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
1: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
2: साथियों, आप सब ने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए।

0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर अय्यर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
2: कुंवर सिंह!

0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
1: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे

0: घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं।
1: पूरी करे।
0: हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
2: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

यह एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: पेट्रोलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया। कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट

0: गंदे, आज तुझको ही देता हूँ ये उपहार।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कोमल सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दाया हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जा

0: को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
1: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
2: ओ माय गॉड, देखो शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
3: यस सर।
1: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोक गीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह।
1: ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन।
0: आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दूसरा कार्यक्रम,
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैंने सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एकम छह,
3: एकम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छेती अठारह।
0: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
1: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
1: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
1: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
1: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
0: वाह, क्या बात है! लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा, अब

0: रोमन, अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
1: करता है, पर पहाड़ा?
0: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
1: फिर पहाड़ा कब?
0: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
1: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
0: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
1: पक्का?
0: पक्का।
1: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
0: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
1: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
0: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
2: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
3: खत्म हुआ झगड़ा। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है कि आज का प्रसारण आपको जरूर अच्छा लगा होगा।
4: इसी प्रकार सुनते रहें उमंग,
3: और मन में आने दीजिए नई तरंग,
4: और अपने मित्रों में बांटते रहें
3: नए मन की तरंग के साथ मन की उमंग।
4: अब अजीत और विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार, नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी के पांचवे एपिसोड में मैं आरजे वर्षा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इस एपिसोड का मुख्य संदेश है तरल अपशिष्ट और इसके प्रकार, जैसे ब्लैक वाटर एवं ग्रे वाटर। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षित संग्रह, उपचार एवं निपटान। ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर का प्रभावी प्रबंधन, साथ में सामुदायिक भागीदारी। श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपके बीच में कुछ सवालों को हम बताना चाहेंगे। इन सवालों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको इसी कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेंगे। तो सवालों को सुनिए और हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। ग्रे पानी, जैसे कि कपड़े, बर्तन धोने और नहाने के बाद का पानी, पौधों को पानी देने या बाहर की जगह साफ करने के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है क्या? हाँ या नहीं। दूसरा सवाल है, ब्लैक पानी जो शौचालयों और नालियों से निकलने वाला मानव अपशिष्ट मिश्रित गंदा पानी होता है, क्या इसे बिना उपचार के पौधों को पानी देने के लिए उपयोग किया जा सकता है? हाँ या नहीं। यदि गंदे पानी का सही ढंग से उपचार नहीं किया जाए तो यह नदियों और तालाबों को प्रदूषित करता है, जिससे वह पानी पीने, खेतों में उपयोग करने और नहाने के लिए असुरक्षित हो जाता है। श्रोताओं, यह सवाल हमने आपके बीच में इसलिए पूछे हैं क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिलेंगे। तो जब कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद आप सभी इसका जवाब जरूर दीजिएगा हमारे नंबर पर फोन करके। हमारा नंबर है 9219207749। आइए श्रोताओं, आज का कार्यक्रम एपिसोड नंबर 5 हम शुरू करते हैं।
7: हेलो, हेलो मनीष जी, आप कहाँ हैं? अरे हम अभी लाइव होने वाले हैं, जल्दी आओ।
8: हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बस 10 मिनट और दे दीजिए, घर पर थोड़ी सी समस्या आ गई है, मैं अभी इस गड़बड़ को सुलझा रहा हूँ।
7: गड़बड़? क्या गड़बड़, क्या समस्या?
8: रुको रुको रुको, पहले पहुंचता हूँ फिर सब समझाता हूँ, जल्दी मिलते हैं।
7: जल्दी आना।

0: आखिरकार तुम आ ही गए, क्या हम तुम्हें तालियों के साथ स्वागत करें?
1: हाँ, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ, न सिर्फ तुम्हें बल्कि हमारे श्रोताओं को भी। देखो, जहाँ हम खाना बनाते और बर्तन धोते हैं, वहाँ से पानी रिस रहा था। गंदा पानी बाहर नहीं जा रहा पा रहा था क्योंकि नाली जाम हो गई थी और वह रोज वहाँ जमा होने लगा। मुझे मानना पड़ेगा कि मैं थोड़ा आलसी जरूर हूँ, और यह तो तुम जानती हो कि मैं मरम्मत कराने की पूरी प्रक्रिया टालता रहा।
0: हाँ बिल्कुल, तुम्हारी सुस्ती तो मशहूर है, हम सब जानते हैं। खैर, फिर क्या हुआ, आगे बताओ।
1: अब यह रिसता हुआ पानी हर तरफ फैल गया और कूड़ेदान में पड़े कचड़े के साथ मिल गया, और पूरा किचन, क्या घर बदबू से भर गया। नाली पूरी तरह बंद हो चुकी है और मेरा घर नाले जैसा महकने लगा है। चारों ओर मच्छर, मक्खियां और कीड़े रेंग रहे हैं, यहाँ तक कि खाने में भी चींटियां मिल रही हैं, और हवा नम और भारी लगती है।
0: ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन क्या संयोग है, यह तुमने यहाँ समस्या साझा की और यहाँ आज ठीक इसी विषय पर बात करने वाले हैं हम लोग। चाहे वह खाना बनाने या बर्तन धोने से निकला गंदा पानी हो या शौचालय का, अगर हम इसे सही तरह से प्रबंधित नहीं करेंगे तो यह गंभीर समस्या बन सकती है। जैसे तुम्हारे किचन में बदबू फैली और मच्छर मक्खियों का अंडा बन गया। कल्पना करो, अगर यह घर घर और बड़े समुदाय में अक्सर होता रहे तो हाल कैसा होगा।
1: सही कह रही हो तुम, यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है।
0: मुझे यकीन है मनीष जी कि हमारे श्रोता अब हमारा ये एपिसोड की शुरुआत करने का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसी समस्याएं हम सबकी जिंदगी में उभर कर सामने आती हैं, और इसलिए हमारा कार्यक्रम पूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: दोस्तों, हमारे शो में आपका स्वागत है। अब तक आप हमें अच्छी तरह पहचान चुके होंगे। मैं आरजे मनीष हूँ और मेरे साथ है

0: मेरे को होस्ट आरजे वर्षा।
1: अभी अभी आपने आरजे मनीष जी की कहानी सुनी और जैसा मैंने कहा आज हम उसी से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे।
0: मैं सभी के सामने वादा करता हूँ कि इस एपिसोड के खत्म होते ही उस रिसाव को ठीक करूँगा और अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, तरल अपशिष्ट क्या है। दोस्तों, घरेलू व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के कारण जो पानी बर्बाद होता है उसे हम तरल अपशिष्ट या वेस्ट वाटर कहते हैं। यह वह गंदा पानी होता है जो मानव उपयोग या अन्य उपयोगी के लिए अब उपयुक्त नहीं होता। इसमें बर्तन धोने, खाना बनाने और शौचालय से निकलने वाला पानी शामिल है। अगर इसे सही से प्रबंधित नहीं किया गया तो यह, जिसे तरल अपशिष्ट भी कहते हैं, गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी तरल अपशिष्ट एक समान नहीं होते। ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट के दो प्रकार होते हैं, ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर। ग्रे वाटर वह गंदा पानी है जो खाना बनाने, बर्तन धोने, स्नान करने और कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मल मूत्र से जुड़ी कोई गंदगी नहीं होती है, यानी इसमें शौचालय या लैटरिन से निकलने वाला पानी नहीं होना चाहिए। घरेलू उपयोग में आने वाले पानी का लगभग 70% ग्रे वाटर में बदल जाता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने ग्रे वाटर का उपचार, पुनः उपयोग या पुनर्भरण करें। वास्तव में हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जहां संभव हो पानी की खपत को कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए चावल, दाल या सब्जियां धोने में इस्तेमाल किया हुआ पानी अलग रखकर पौधों को पानी देना या बाहरी क्षेत्रों की सफाई के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। हम इस पर इस एपिसोड में थोड़ी देर बाद विस्तार से बात करेंगे।
0: दूसरी ओर ब्लैक वाटर बहुत अधिक प्रदूषित होता है क्योंकि इसमें शौचालय का, मानव मल मूत्र, सेप्टिक टैंक का ओवरफ्लो या खराब रख रखाव वाले लैटरिनों से रिसाव शामिल होता है। इस प्रकार के पानी को सुरक्षित रूप से निपटने से पहले विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। ब्लैक वाटर में रोग जनकों का स्तर भी अधिक होता है, इसलिए इसमें जैविक या रासायनिक उपचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए उचित तरल अवशिष्ट प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसके बिना यह गंदा पानी पीने के पानी के स्रोतों को प्रदूषित कर सकता है, बीमारियां फैला सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से संभाला जाए तो हम इसका बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं, अनावश्यक ताजा पानी की खपत घटा सकते हैं और ये सभी कदम हमारे गांव को हरा भरा और स्वच्छ बना सकते हैं।
1: अब बात करते हैं कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह कोलेरा और दस्त जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है जो गंदे पानी के कारण होती है। सोचिए कितने लोग सिर्फ इसलिए बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि अपशिष्ट जल का ठीक से उपचार नहीं करते हैं। दूषित पानी तेजी से संक्रमण फैला सकता है, खासकर उन गांवों में जहां लोग साझा जल स्रोतों पर निर्भर होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा। दूसरा, तरल अपशिष्ट प्रबंधन हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। अगर अपशिष्ट जल को सही तरह से निपटाया नहीं गया तो हानिकारक रसायन और बैक्टीरिया हमारी नदियां और तालाबों में चले जाते हैं, जिससे पानी पीने, खेती और स्नान करने के लिए असुरक्षित हो जाता है।
1: एक और महत्वपूर्ण कारण है पुनः उपयोग और पुनर्भरण, यानी रिसाइकिल और रीयूज सरल तरीकों जैसे सोख गड्ढे, रिसाव गड्ढे और उचित नाली चैनल से अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग सिंचाई वाहनों की सफाई, बाहर की सफाई आदि के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी उपाय ताजा पानी की मांग को

0: कम करेंगे
1: और भूजल का भी ध्यान रखना है। अगर हम तरल अवशिष्ट को लापरवाही से फेंकते हैं तो यह जमीन में रिसकर हमारे कुओं और बोरवेल्स के पानी को प्रदूषित कर देता है। इसलिए अवशिष्ट जल को अलग रखना और ठीक से उपचारित करना अनिवार्य है।
0: अब जब हमें पता चल गया है कि तरल अवशिष्ट प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो चलिए ग्रे वाटर पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्योंकि ग्रे वाटर कम प्रदूषित होता है, इसे पुनः उपयोग करना आसान होता है। तो आइए कुछ आसान तरीकों को जानें, जिनसे हम ग्रे वाटर को सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग करके अपने गांव को स्वच्छ और जल समृद्ध बना सकते हैं।
1: एक सरल तरीका है खाना बनाने और बर्तन धोने से निकलने वाले ग्रे वाटर को नाली के माध्यम से इकट्ठा करना या फिर बाल्टी में जमा करके पौधों को पानी देने के लिए उपयोग करना। बाथरूम का अवशिष्ट जल सोख गड्ढे या रिसाव गड्ढे से जोड़ा जा सकता है।
0: घरेलू स्तर पर सोख गड्ढा रिसाव गड्ढा बनाना बहुत आसान है। सोख गड्ढे के लिए हम पत्थरों या भट्टी में पकाई गई ईंटों से भरा हुआ एक गड्ढा खोद सकते हैं और ग्रे वाटर को वहां इकट्ठा कर दे सकते हैं। एक अन्य तरीका है रेत और बजरी फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाना। यह स्वाभाविक रूप से गंदगी को हटा देता है और पानी को सुरक्षित रूप से पुनः उपयोग के योग्य बनाता है। रिसाव गड्ढा भी होता है जो हनीकॉम्ब तकनीक से बने ईंटों की पंक्तियों से निर्मित होता है।
1: हनीकॉम्ब तकनीकी ये क्या होती है?
0: हमने पिछले एपिसोड में लैटरिन में हनीकॉम्ब गड्ढों के बारे में भी बात की थी। तो अब बस वही कल्पना करो कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा दिखता है। छोटे छोटे षटकोणीय छिद्रों से भरा हनीकॉम्ब तकनीक ईंट और सीमेंट या प्लास्टिक की सीट से इसी तरह की परतों वाली संरचना बनकर उपयोग करती है। ये हनीकॉम्ब गड्ढे गंदे पानी के बहाव को धीमा कर देते हैं और मिट्टी व साबुन को फिल्टर कर साफ पानी जमीन में जाने देते हैं।
1: स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई गांवों में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सफलतापूर्वक सोख गड्ढे बनाए गए हैं।
0: रुको रुको, तुम बता सकते हो कि सोख गड्ढा क्या होता है और यह ग्रे वाटर को कैसे प्रबंधित करता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, सोख गड्ढा एक छोटा ढका हुआ गड्ढा होता है जो पत्थर और बजरी से भरा होता है। यह गंदगी को फिल्टर करके पानी को जमीन में धीरे धीरे रिसने देता है, जिससे पानी ठहरने और भूजल प्रदूषण की समस्या नहीं होती है।
0: ओहो, आप समझ आया। तो सोख गड्ढे भूजल को भी फिर से भरने में मदद करते हैं, क्योंकि ग्रे वाटर मिट्टी में धीरे धीरे रिसकर कुओं और बोरवेल को सूखने से बचाते हैं, है ना?
1: बिल्कुल वर्षा, लेकिन याद रखना चाहिए कि सोख गड्ढे या रिसाव गड्ढे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप किसी निम्न भूमि वाले क्षेत्र में रहते हैं और जहां बाढ़ का खतरा रहता है तो वहां सोख गड्ढा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह ओवरफ्लो कर सकता है या आसपास के क्षेत्रों को प्रदूषित कर सकता है। इसलिए सोख गड्ढा बनाने से पहले कुछ सुरक्षा सुझाव याद रखें, जैसे कि उच्च जल स्तर, पथरीली भूमि या फिर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सोख गड्ढे का उपयोग ना करें। किसी भी पेयजल स्रोत यानी हैंडपंप या बोरवेल से कम 10 मीटर की दूरी रखें।
0: यह तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और क्या आप जानते हैं कि ग्रे वाटर जो रसोई बाथरूम और धोने से निकलता है, दो स्तरों पर प्रबंधित किया जा सकता है? हाँ, एक घरेलू स्तर पर और दूसरा सामुदायिक स्तर पर।
1: सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर को कुछ स्मार्ट और सतत तरीकों से प्रबंधित किया जा सकता है, जैसे कि कम्युनिटी रिसाव गड्ढे जो रहते हैं, बेस्ट स्टेबलाइजेशन तालाब और निर्मित वेट लैंड्स। सामुदायिक स्तर पर ग्रे वाटर को कुछ स्मार्ट और सतत तरीकों से प्रबंधित किया जा सकता है, जैसे कि

0: कम्युनिटी सावगड्डे वेस्ट स्टेबलाइजेशन तालाब और निर्मित वेटलैंड्स।
1: कम्युनिटी रिसाव गड्ढा एक ईंटों से पंक्तिबद्ध गड्ढा होता है जिसे गांव के एक सुविधाजनक स्थान पर कई घरों के लिए बनाया जाता है। इन घरों से ग्रे वाटर गड्ढे में पहुंचाया जाता है। बेस्ट स्टेबलाइजेशन तालाब एक उथला मानव निर्मित तालाब होता है जहां घरेलू अपशिष्ट जल प्राकृतिक रूप से औपचारित होता है। फिर हमारे पास निर्मित वेटलेट्स हैं। ये ऐसे इंजीनियर सिस्टम हैं जो पौधों और मिट्टी की मदद से प्राकृतिक वेटलेट्स की तरह ग्रे वाटर का उपचार करते हैं।
0: तो अगर आप 5000 से अधिक आबादी वाले किसी बड़े ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आप यह विषय अपनी पंचायत के साथ उठा सकते हैं। वे यह पानी लगा सकते हैं कि इन ग्रे वाटर प्रबंधन विधियों में से कौन सी गांव में की भौगोलिक स्थिति और जरूरतों के हिसाब से सबसे उपयुक्त होगी।
1: हाँ बिल्कुल सही। अब चलिए ब्लैक वाटर पर आते हैं। चूंकि इसमें मानव अपशिष्ट शामिल होता है इसे बहुत सावधानी से संभालना चाहिए। इसे संभालने का सबसे अच्छा तरीका है उचित स्वच्छता प्रणालियों का उपयोग जैसे कि सेप्टिक टैंक और ट्रेन पिट शौचालय।
0: हाँ एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया सेप्टिक टैंक और ट्रेन पिट यह सुनिश्चित करते कि ब्लैक वाटर का ठीक से उपचार हो और आसपास के क्षेत्र प्रदूषित ना हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली कराना चाहिए कम से कम हर 3 से 5 वर्षों में ताकि ओवरफ्लो ना हो। जबकि ट्विन पिट शौचालय प्राकृतिक रूप से अवशिष्ट का अवघटन होने देते हैं और सेप्टिक टैंक के साथ एक सोख गड्ढा होना चाहिए ताकि टैंक से ओवरफ्लो होकर निकलने वाला ब्लैक वाटर सीधे खुले नाली में ना जाए। इन दोनों प्रणालियों का उचित रख रखाव यह सुनिश्चित करता है कि ब्लैक वाटर का प्रभावी रूप से उपचार हो और यह जल स्रोतों व मिट्टी को प्रदूषित ना करे।
1: बिल्कुल
0: यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि जैसे अवशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदला जा सकता है। ब्लैक वाटर का सही उपचार मच्छरों की संख्या कम करता है, बीमारियों को घटाता है और हर किसी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ गांव सुनिश्चित करता है।
1: हमने व्यक्तिगत स्तर पर क्या किया जा सकता है इस पर बात की, लेकिन वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए पूरे समुदाय को मिलकर काम करना होगा। कई गांवों ने स्थानीय समितियां बनाकर अपने तरल अपशिष्ट की निगरानी करके इस सफलता पूर्वक प्रबंधित किया है।
0: सही कहा आपने, समुदाय मिलकर सूख गड्ढे खोद सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं और नालियों ढकी रख सकते हैं ताकि गंदा पानी साफ पीने के स्रोतों से ना मिले। अच्छी ड्रेनेज से घरों से अवशिष्ट जल को दूर ले जाती है जिससे स्वास्थ्य जोखिम कम होता है और पर्यावरण स्वच्छ रहता है। इन प्रणालियों को गांव की जरूरतों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है ताकि वे प्रभावी रूप से काम करें।
1: एक और शानदार पहल है स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित करना। कुछ गांव रेत या बजरी फिल्टर से होकर गुजरने वाले ग्रे वाटर को खेतों में सिंचाई के लिए पुनः उपयोग करते हैं, जबकि कुछ ने वर्षा जल को स्टोरेज टैंकों में जमा करके खेतों और घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग कर पानी की बर्बादी कम की है।
0: हम तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सफलता कहानियों से भी सीख सकते हैं जहां सूख गड्ढे और ड्रेनेज सिस्टम से ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को काफी बेहतर बनाया है।
1: पीने के पानी और स्वच्छता विभाग की ग्रे वाटर मैनुअल रिपोर्ट के अनुसार सरकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के माध्यम से इन प्रयास

0: प्रयासों का समर्थन कर रही है, जिसके तहत अब तक 11.8 लाख से अधिक ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणालियां बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से 8.9 लाख सूख गड्ढे हैं। यह दर्शाता है कि सही योजना बनाकर हम इस समस्या का प्रभावी समाधान कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, हम मानते हैं कि आज का एपिसोड थोड़ा हैवी था, लेकिन आज हमने बहुत कुछ आपको बताया। हमने जाना कि तरल अवशिष्ट प्रबंधन मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम, जैसे कि ग्रे वाटर का पुनः उपयोग, ब्लैक वाटर का प्रबंधन, सेप्टिक टैंकों का रख रखाव और सामूहिक प्रयास, हम सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, हर एक कदम मायने रखता है, चाहे वह ओवरफ्लो नाली की रिपोर्ट करना हो, सूख गड्ढा बनवाना हो या जागरूकता फैलाना हो। हम जो भी कदम उठाएंगे वह हमें एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य के करीब ले जाएगा।
1: अगर हम अपनी नालियों और अवशिष्ट का सही प्रबंधन करें, न सिर्फ पानी बचेगा बल्कि हम स्वस्थ जीवन भी जी सकेंगे। आइए संकल्प लें कि हम ग्रे वाटर का उपयोग करेंगे, अपने घरों में ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर को नहीं मिलने देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अवशिष्ट जल का सही प्रबंधन हो। हमें अच्छी तरह से काम करने वाली स्वच्छता प्रणालियों बनाने और उनका रख रखाव करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा आसपास का वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहे।
0: साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, एक स्वच्छ गांव ही एक स्वस्थ गांव है।
1: सुनने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें और अपने गांव को चमकते रखें।
0: आज के कार्यक्रम यानी के संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी के पांचवें एपिसोड से जाने का होता है अब हमारा समय। अपने रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
0: अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संपूर्ण स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी।

साथ साथ ही नमस्कार रेडियो बुंदेलखंड 90 समाचार सुनेवे बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे थेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में और हम हेंगे आपके संगे आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। साथियों आप तो जानते ही हेंगे कि खेत खलिहान कार्यक्रम हमारे किसान साथियों के लाने बहुत ही उमदा कार्यक्रम मानो जाऊते को कहके इमें अपन हो रहे जो बातचीत कर रहे थेंगे वो अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातचीत होतेगी, चाहे फसल को कैसे लगाने हैं उनकी बात कर रहे हैं, फसल में कौन सी कीट व्याधियों को भगावे के लाने का तरीका अपनाना चाहिए वो बताथेंगे, बुआई के तरीका का होतेंगे, तमाम तरह की किसानी से जुड़ी हुई जो भी चर्चाएं होती वे अपन हो रही खेत खलिहान कार्यक्रम में समय समय पे करत रहेंगे। तो ऐसे ही अपनो खेत खलिहान कार्यक्रम सुन के अपने एक साथी हेंगी नंदिनी अहरबाज जी जो कि सकरार से हेंगी, जाउन सकरार आपने नाम सुनो हुई है, तो जाउन सकरार से नंदिनी जी ने कार्यक्रम को सुन के अपनो सवाल भी हमसे पूछने की कोशिश करी हैगी और उनको कहबो हैगो कि आपके कार्यक्रम में जो एक्सपर्ट आउट हेंगे उन्हीं से हमें जा बात जाननी हैगी। तो आज हम अपने कार्यक्रम में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सोलंकी सर जी को फोन पे जोड़ रहे हैंगे और नंदिनी जी को जो सवाल है वो कि उनकी कटहल जो पुरानी कटहल को पेड़ लगो है तो उसमें पीली पड़ रही बार सूख रही हैगी और ये बार फल नहीं लग रहा है। नंदिनी जी के अनुसार उसमें फल हमेशा लगाते और बहुत बढ़िया फल लगाते, तो ऐसी अचानक से जो दिक्कत उन्हें आ गई हैगी उनके कटहल के पेड़ में बा परेशानी को समाधान भी कार्यक्रम से जानबो चाहती हैंगी। तो हम अपने कार्यक्रम में डॉ

0: करने का प्रयास किया और उसमें जो समस्याएं आई उसके विषय में भी बताया और कहा गया कि कटहल जो काफी लंबे अरसे से फल दे रहा है उनका
1: जी।
0: लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस वर्ष उसने फल नहीं दिए, पीला भी पड़ रहा है और कमजोर भी है
1: जी।
0: तो मेरा नंदनी को और नंदनी के सहित हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो फल पौधों के उगाने में अपने अभिरुचि रखते हैं उनको मेरा आग्रह है कि जो भी फल वाले पौधे हैं निश्चित रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता हर फसल को, हर पौधे को, हर जीव को होती है। इसमें लंबे समय से हम अगर उनको पोषक तत्वों का आपूर्ति नहीं करेंगे तो वो फल वृक्ष भी कमजोर हो जाता है और साथ साथ उसमें फलों का आगम भी कम होता है और फल फूल आ भी जाते हैं तो ड्रॉप कर जाते हैं। तो इसमें हमारे निरंतर हो जा रही कमियों को देखते हुए जो पोषक तत्व है या जो सूक्ष्म तत्व है उनकी निरंतर कमी हो रही है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसके लिए मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जितनी परिधि में उनकी छांव होती है, फल पौधे की जितनी परिधि में छांव होती है यानी उस तने से लगभग 8-10 फीट दूर जो उसका तना है उसके 8-10 फीट दूर में 1-1.5 फीट गहरी गड्ढा खोदो, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक चैनल बना दो, नाली बना दीजिए चारों तरफ
1: जी,
0: ठीक है, और बिल्कुल जड़ में नहीं बनाना है
1: जी।
0: जड़ से 10 फीट दूरी पर एक घेरा बना दीजिए और उसका 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा उसमें गड्ढा खोद दीजिएगा और उसमें जिंक सल्फेट और बोरोन, ये बाजार में बोरेक्स के रूप में मिलता है और जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है
1: जी।
0: और उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और उसी में डीएपी और यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोषक पोटाश और महुआ की और नीम की खली, ये पूरा मिक्सचर बना दीजिएगा। तो मिक्सचर बना करके उस गोबर की खाद में मिला करके उसमें डाल दें, उसकी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हटा करके दूसरी मिट्टी फिलअप कर दें, उस मिट्टी में ये पूरा मटेरियल मिला करके उसको दे दें, दबा दें उस नाली में और उससे ऊपर पानी लगा दें
1: जी।
0: ये हमको करना चाहिए था फरवरी से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप कर देंगी और या हमारे किसान भाई जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं जो लंबी अवधि तक फल देते हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाना प्राय देखा गया है
1: जी।
0: उनको ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है और उसी में निरंतर फिर पानी भर दें उस नाली में, मिट्टी का जो है जो मैंने पोषक तत्व बताए वो प्लस भराई करके पानी भर दें तो वो फल देने लग जाएगा, उसमें फलों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल, तो सर एक उन्हें रिजल्ट जी की हम बात कर रहे थे कि उनको रिजल्ट देख भी के लाना उन्हें कब तक मिल पे है वो, काहे कि अपन उन्हें जो सोचते हैं ना कि जैसे ही हमने काम करो तुरंत ही को रिजल्ट हमें देख भी मिल जावे, तो कितने दिन तक उन्हें इंतजार करने पड़े तब जाकर वो पेड़ अपनी पहले जैसी अवस्था में आप
0: देखिए वो जब उसमें ये काम करेंगी तो मैं समझता हूँ 1 वीक में, 1.5 से 1 से 2 वीक में उसमें हरियाली आ जाएगी है ना, पीला को दूर होने लगेगा और भी जल्दी करना है तो उसमें जो लिक्विड डीएपी आ रही है मार्केट में और जिंक और बोरोन का सॉल्यूशन 0.2% का, या जब भी वो दवा लेने जाए तो किसान भाई जब हमारे दवा लेने जाते हैं किसी दवा विक्रेता के यहाँ से तो वहां से वो एक डोज की नियत मात्रा बताते हैं, हर डोज की मात्रा का गणना वो दवा के अनुसार की जाती है, इसलिए मेरा यहाँ बताना मुश्किल है कि वो कितने परसेंट की दवा है।
1: बिल्कुल,
0: तो जितने परसेंट की दवा होगी उसका उतने परसेंट का सॉल्यूशन बना करके हम किसान भाइयों को ये आगाह करते हैं कि उसका फॉलियर स्प्रे करते हैं तो उसका जल्दी परिणाम आएगा।
1: बिल्कुल जी सर,
0: तो वो जो भी उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है अगर स्प्रे कर सकते हैं तो स्प्रे करें और स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो तने के आसपास चैनल नाली खोदें और उसमें ये खुराक भरवा दें, भराई करवा दें।
1: बिल्कुल सर, तो या तो बात हो गई सर अपनी कटहल की कि कटहल को अपन कैसे जीवित रखने हैं वो, दूसरी बात करें सर अपन देख रहे हैं कछु दिनों से बहुत ज्यादा अपने बुंदेलखंड में अक्सर

0: देखो जा रहा है कि शाम के समय आंधी तूफान जैसा माहौल बन जाते हो, तो ऐसे में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैंगी उनको बचावे के लाने का तरीका अपने किसान साथी अपना सकत हैंगे?
1: देखिए, इसके लिए तो अब एकाएक तो रोकना असंभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं
0: जी
1: और इसके लिए तो हमको बाढ़ विधि ही सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो
0: जी
1: पश्चिमी और उत्तर दिशा में हमारे किसान भाई बाढ़ लगाएं और बाढ़ से जो गर्म हवाएं आती हैं उनसे रुकावट होती है, और कद्दू वर्गीय फसलों में जो पछुआ हवाएं जो इस समय आजकल चल रही हैं, और गर्मी भी उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से, यहाँ से ही गर्म हवाएं आती हैं, इनसे रोकने के लिए हम लोग बाढ़ विधि का प्रयोग करें। और उस बाढ़ विधि में या तो बायो बाढ़ विधि लगा दें, जिसमें लंबे लंबे पेड़ पौधे पहले लगाए जाते रहे थे,
0: जी
1: या इतना जल्दी नहीं है तो किसी से भी उस बाढ़ उसकी हवा की गति को हम लोग कम करें, जैसे अपना खेती किसानी का जो कूड़ा करकट निकलता है उसको
0: जी
1: एक एक डेढ़ डेढ़ फीट ऊंचा तक कर दें, या जो है उसमें मेड़ बना दें थोड़ा ऊंची,
0: जी
1: और इसके साथ अगर नहीं है तो पानी चैनल खुदवा के, खाई खुदवा के उसमें पानी भर दें।
0: जी
1: तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ये प्लानिंग करने से पहले, अब तो किसानों ने लगा दिया कद्दू,
0: जी
1: कद्दू वर्गीय फसल आ रही है, तो उससे लगाने से पहले ही हमको ये प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है कि बढ़ती हुई गर्मी से बचाव हम कैसे करें। तो हमारे किसान भाइयों से है कि जिस दिशा से गर्म हवाएं आ रही है वहां चैनल लगा दें, चैनल में पानी भर दें तो उससे रुकावट हो जाएगी, और हवा को रोकने के लिए विंड ब्रेक का कोई भी संसाधनों से उसका रुकावट करें तो हवा की गति कम हो जाएगी, तो कद्दू वाली फसल बच जाएगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको। आप हमेशा तत्पर रहेंगे अपने बुंदेलखंड के किसानन के लाने, और जब भी हम आपको फोन करें या आप प्रत्यक्ष रूप से आउट होंगे तो बिल्कुल हमारे किसानन के लाने एक उम्दा जानकारी दे के जाऊ थेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, हम कर वो जाऊ थेंगे सर।
1: चलिए, आपको पुनः सादर नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: सभी हमारे बुंदेलखंड रेडियो कार्यकर्ताओं।

एक बार साथी रहो, फिर से बहुत बहुत स्वागत कराते कार्यक्रम खेत खलिहान में। और बड़ी नौनी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी ने दी हैगी। और जब जानकारी चूंकि हमारे एक श्रोता साथी हैं नंदिनी जी, उनने एक सवाल करो तो उन सवाल को जवाब के लाने हमने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी से बातचीत करी। और बातचीत कर रही थी हमारी वर्षा जी, तो जो जानकारी पाके शायद नंदिनी जी के मन में जो सवाल हते और चल रहे थे वे सवाल उनको शायद जवाब मिल गया हुई। हम कोशिश करते हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी जा खेत कल्याण कार्यक्रम को सुनत हैंगे और सुन के, बहुत सारे किसान साथी तो हमें फोन करके पूछ लेते हैंगे कि हमारे फसल में जा परेशानी है या

0: आगे चल के कौन तरीके की फसल हमें करें चाहिए, तमाम प्रकार के सवाल जवाब हो जाते हैं और हम कोशिश कराते हैं कि उन सवालों के जो आपके मन में चला थे उनके जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको उपलब्ध हो जाए, तो हम पूरी कोशिश कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप हमारे नंबर 9219207749 तो फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं उनको कभी कभी तो डर लगा था कि हम रेडियो पर कॉल का करेंगे और कैसे बातचीत करेंगे, तो चूंकि आपको बताना चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और जो समुदाय के लाने बनाओ गए है वो समुदाय की समस्याएं, समुदाय की जानकारी, तमाम प्रकार की बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से करते हैंगे। तो आप ही को जो मंच है वो तो जाकर उपयोग करें। हम अब कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको जो जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। कैसे बहुत सारे हमारे किसान साथी, युवा किसान साथी जो रथ हैंगे वे यूट्यूब पर जानकारी को सुनवा चाहते हैंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैंगे, हम प्रयास कर रहे हैंगे कि यह जानकारी रेडियो के संगे संगे अपने जो माध्यम इंटरनेट को माध्यम है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचावे कि हम कोशिश करें। छोटे छोटे टुकड़न में जरूर करेंगे, छोटा सा प्रयास करें। हम जो बिल्कुल वादा नहीं कर रहे कि आपको हम शुरुआत जल्दी कर देंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम जरूर जाके लाने प्रयास करेंगे। हम मैनेजमेंट जो हमारी कमेटी है उनसे बातचीत करके कोशिश करें कि ये कार्यक्रम को हम लोग लाइव या फिर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएं। तो हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझे गए होंगे। अब एक बात आती है कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी, हमारे वर्षा जी फेसबुक पे जो मौसम की जानकारी पहुंचाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाते हैं आप लोगों तक, तो मौसम की जानकारी जरूरी है। कैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैंगे उनको जानकारी बहुत अच्छी लगत है, उनके लाने मौसम की जानकारी है। और एक बार फिर से पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 9219207749 हजार नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चूंकि इंटरनेट के माध्यम से हमारे और कहीं भी हमारे श्रोता साथी इस ऐप के माध्यम से, रेडियो बुंदेलखंड के ऐप के माध्यम से कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमें खुशी हुई थी जब सोमवार को और बुधवार को हमारे फरमाइशी कार्यक्रम चलते हैंगे और इतने दूर दूर से हमें कॉल आते हैंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र से हमारे किसान साथी जुड़ते हैंगे, बड़ा अच्छा लगा था वो। तो हम प्रयास करें ये कार्यक्रम और सुगम और सरल बनाने की कोशिश करें, खासतौर पर यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो पहले मौसम की जानकारी सुनो, जाके बाद अपन बातचीत करते हैंगे। लेकिन जैसे पहले अपन संगे संगे गीत संगीत भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गीत संगीत सुनते हैंगे, इसके बाद मौसम की जानकारी अपन सुनते हैंगे।
1: जीवन भर सुख दे।

अपनी भूमि रे खुशहाली सुमाला, अरे माला माल कर देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती। फसल उपज खो खूब बढ़ावे, फसल उपज खो खूब बढ़ावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, सुलावई अरे लावई, हाँ लावई लाभ हमें देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख।

किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुने हुए बारे हमारे सब किसान साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और श्रोता भैया हम लेके हाजिर हो गए हैं आप सबके लाने मौसम आधारित जानकारी को। तो जो मौसम आधारित जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहेंगे वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जो जानकारी कौन कौन सी क्षेत्रों के लाने हैं ये बाबी हम आपको बता दे रहे हैं। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जिला टीकमगढ़ छतरपुर दतिया और निवाड़ी जिला शामिल है। वो साथ ही आगामी 5 दिनों को मौसम को पूर्वानुमान इस प्रकार से है। वो मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त भी जो मौसम के पूर्वानुमान अनुसार जानकारी बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के लाने हैगी। और इनमें बताओ गए है वो कि शाम के समय गरज चमक के संग ओलावृष्टि आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। वो आमतौर पर शुष्क मौसम रह सकत है। वो अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात को न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना हैगी। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और गरज चमक के संग वर्षा तथा तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैगी। सूजी में खड़ी फसल को गंभीर नुकसान भी हो सकत है। वो किसान साथियों को सलाह दी जा रही है कि वे पकी भई जो फल है सब्जियां हैंगी उनकी कटाई को कार्य शीघ्र से कर लेगी। साथ ही में कमजोर फसलों को सहारा भी दे देंगे। अब बात करते हैं श्रोताओं मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श की। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप देखो जा रहे हो। अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर दे तथा पाए जावे पर बचाव हेतु इमिडाकोप्रिट दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेंगे। जिन किसान भाइयों ने खाली खेतों की जुताई नहीं करी है वे विगत सप्ताह में भई बारिश से प्राप्त नमी को लाभ लेत भय जुताई को काम कर लेंगे। अब बात करे थे फल फूल और सब्जियों के बारे में। किसान भैया टमाटर मिर्च तथा बैगन की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग को प्रकोप देखो जा रहे हो। इसे बचाव हेतु किसान साथी कोनालफास 25 EC दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर ले गए तथा अभी बारे 7 दिनों तक सब्जी को बिल्कुल न तोड़ गए। श्रोता साथियों ओलावृष्टि गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पान के लगे भय बरीचा की मरम्मत को कार्य कर ले गए। भिंडी की फसल में लाल कीड़ा को प्रकोप हो सकत है। वो अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर दे और अगर कीड़ा पाया जा रहा है वो तो उनके बचाव हेतु ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे कि कद्दू लौकी टिंडा करेला तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़ने से दिखाई दे सकते है। वो अतः इसे बचने के लाने अपने किसान भाई ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। किसान भाई नए बाग लगावे हेतु स्थान को चुनाव कर दे। साथ ही में खुदाई

पर भी शुरू कर दी गए। नींबू वर्गीय पुराने पौधा के तने पर चूना में प्लाई टाक्स मिला के लेप कर लिए गए ताकि धूप से तना की क्षति ना हो गए। अब बात कर रहे थे ये साथियों अपने पशुओं की, पशु बकरियां और मुर्गियों की। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोटू व जहरी बुखार के टीका जरूर लगवा लेवे ताकि बारिश के मौसम के आगे तक इनमें अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास हो पावे। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि गरज चमक के संगे वर्षा तथा आंधी तूफान को देखत भी अच्छी छत बारे पशुशालाएं के गिरवे को डर बने रहते हुए सुई से बचवे के लाने कच्ची पशुशालाएं की मरम्मत को कार्य भी जल्दी से जल्दी कर ले दूं ताकि कच्ची छत वाले पशुशाला में पशु सुरक्षित रह पावे। तो साथियों जो जानकारी हम आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से जो जानकारी आपको रेडियो बुंदेलखंड पर बताई जा रही है। आज की यह जानकारी इतने की अगली जानकारी हम आप तक फिर से लेके आए हैं। आप ऐसे सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनी रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। अभी अपन ने जो मौसम आधारित जानकारी को सुनो और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों तक जो जानकारी पहुंच रही हुई है, कैसे अब जो मौसम परिवर्तन हो रहा हो, खासतौर पर गर्मियों में इस तरीके का मौसम परिवर्तन, कहीं कहीं तो जब मौसम इतना करवट ले जाता है, कहीं कहीं पानी बूंदाबांदी हो जाते हैं, कदम कदम तो ओले पड़ जाते हैं, तो मौसम करवट जब ले थेगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं खेती में भी आते हैं। तो हमें खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो, उनको बचावे के लाने हमें अथक प्रयास करने हैं। कैसे बच सकत आप सभी श्रोता साथी भली भांति जाखों जानत भी होंगे कैसे अपनो पर्यावरण को अपन लोग बचा सकते हैं। खासतौर पर हमें कोशिश करने के हमें जैविक पद्धति की ओर जावो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आने वाले समय में हम जैविक पद्धति को अपनावे की कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। हमारे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में जैविक पद्धति से अपना खेती को करण लगे हैंगे और आधुनिक खेती करवो, प्राकृतिक खेती करवो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज वाला विषय भी है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर हमारे किसान साथी करत हैंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा भी होते है। अगर जमुनिया की बात करें और हमारे कुनुआ में भी कुछ किसान महिलाएं हैं जिन्होंने जैविक खेती करवो स्टार्ट करो है, वो ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैंगे कि हमारे किसान साथी अब बदलते समय में अपनी खेती भी बदल रहेंगे। तो हमें जब बदलाव के आगे चलने हैं, वो बदलने हैं अपनी खेती की, जब पुरानी पद्धतियों हो, नई चीज़ों को नई तकनीकी से अपन को खेती करने हैं को, तो समय समय पर हम हर बार अपने किसान साथी के लाने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेके आतेंगे। तो हमें आशा है कि जो जानकारी पाके हमारे किसान साथी जरूर अपने खेती में जरूर बदलाव करें। तो अब वक्त हो चुका है जो कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जावे को, तो कैसे लगो जो कार्यक्रम हमें जरूर बताओ। हमारे जा नंबर पे नंबर है 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आप चिट्ठी पत्रिका भेजना चाहते हैं को पत्रिका को पत्र है नौ रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओर छतगेला के पास ओरछा। तो अब हमें दे जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई है अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ई बेरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हमले क्या गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आओ सुनते हैं आज बढ़िया से हास्य गीतन को और उन गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। सो आओ दोस्तों, देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ थे और कार्यक्रम में सुनाते हैं बढ़िया से हास्य गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं कालीचरण राजपूत जी। अरे

0: बिल्कुल दोस्तों, आदो निबुगा कटो धरो है, आदो सिलगत है कंडा। देखो कितनों प्यारा जो टोटका गीत अपन सब जन ने सुनो है, ईको आनंद लो है। ई गीत को गा रहे थे भैया कालीचरण राजपूत जी। आओ दोस्तों, अब एक क्रम में सुनते हैं अपन अगले साथियों के गायब है गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो जी गीत को गा रहे हैं बलबीर सुमन जी।
1: महिला सीट भाई।

बिल्कुल दोस्तों, 3 दिन से बोली निन्या बैठी है स्विच ऑफ। देखो दोस्तों, कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लाओ। और ये गीत को गा रहे थे बलबीर सुमन जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं एक और बढ़िया से हास्य गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, कचरिया जू को ब्याह सब जुर्म लेने होते हैं। आइयो देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे चंदन सिंह आरबानी जी। अब दोस्तों एक के संग हम आप सब जन को जो बता देंगे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो गए है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और चलत चलत आप और लिख लो हमारे पते खो और फोन नंबर खो, जिसे कि आप और पते पे फोन नंबर पे ई कार्यक्रम के राय सुझाव पहुंचा सके। तो दोस्तों हमारा फोन नंबर है 95 32 54 37 36 और हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास।

ओरछा। सो हमारी फोन नंबर पे और ई पते पे आप ही कार्यक्रम के राज सुझाव हम तक पहुंचा सकत। अब दोस्तों अपने दोस्त खुदो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: अगर फिर संभाल जो चाहो जिंदगानी में कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।
1: पानी पिलाओ जरा सा तपाओ लगा करके ध्यान, पानी पिलाओ जरा सा तपाओ लगा करके ध्यान, उड़ ले करके ढकना।

लेकिन आप वो हाथ फैलो तो बीमारी फैले या तन अनेक। अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप वो हाथ फैलो तो बीमारी फैले अनेक तन अनेक।

काशी वो आत्मा कह रही है। वक्त आने से पहले ही धन जाती है, अरे वक्त आता मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत

होती है तो आपके आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

जब जब श्री कड़े भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया। ए घर घर फिरती है श्याम को, घर घर तू

0: बात सत्य है, नारियां देवी का रूप होती है, बात सत्य है।
1: एक तरफ ये देवी है, दूजा में पुजारी हूँ।
0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोल से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी। कहना

0: चांद भी इतना मत चमक, ए चांद भी इतना मत चमक। मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते। वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी याद नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यारे मोहब्बत मत करना, यारे मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारे मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जरा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल तलक तुम्हारा।

0: सपना से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
1: सपना? सपना कौन थी?
2: मेरी अपनी पूरी।
3: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, पैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था।

0: तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
1: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करें, ये तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे यह कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
0: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी, और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी।

0: और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपया अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती के साथ ही जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मुझे

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथ ही जैसे कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपये आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपये और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही

0: बार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है। वाटरशेड परियोजना के माध्यम से मिल सकता है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन, हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से है, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
1: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनी होगा।
0: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा। इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाय OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC MI वर्क फ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
1: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आप ने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का, तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
0: हमारा नंबर है
1: 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष
0: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति हमारी और आपकी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों हमले क्या गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों विधा बुंदेली कार्यक्रम में आओ सुनते हैं आज बढ़िया से हास्य गीतन को और उन गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। सो आओ दोस्तों देर न करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनाते हैं बढ़िया से हास्य गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं कालीचरण राजपूत जी। अरे

0: बिल्कुल दोस्तों, आदो निबुगा कटो धरो है आदो सिलगत है कंडा। देखो कितनो प्यारा जो टोटका गीत अपन सब जन ने सुनो है, ईको आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया कालीचरण राजपूत जी। आओ दोस्तों अब एक क्रम में सुनते हैं अपन अगले साथियों के गायब है गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। तो जी गीत को गा रहे हैं बलबीर सुमन जी।
1: महिला सीट भाई।

बिल्कुल दोस्तों, 3 दिन से बोली निन्या बैठी है स्विच ऑफ। देखो दोस्तों कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जरन ने सुनो, गीत को आनंद लो। और ये गीत को गा रहे थे बलबीर सुमन जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुना थे एक और बढ़िया से हास्य गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, कचरिया जू को ब्याह सब जुर्म लेने होते हैं। आइयो देखो दोस्तों, कितना प्यार जोगी तपन सब जनन ने सुनो है गीत को, आनंद लो। ये गीत खुगा रहे थे चंदन सिंह आरबान जी। अब दोस्तों एक के संग हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से आपके दोस्त माता दीन भैया को जावे को समय हो गयो है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति, और चलत चलत आप और लिख लो हमारे पते को और फोन नंबर को, जिसे के आप और पते पे फोन नंबर पे कार्यक्रम के राय सुझाव पहुंचा सके। तो दोस्तों हमारा फोन नंबर है 95 32 54 37 36, और हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगला के पास ओरछा। सो हमारे फोन नंबर पे और ई पते पे आप ई कार्यक्रम के राय सुझाव हम तक पहुंचा सकत। अब दोस्तों अपने दोस्त खुदो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।